0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836

हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लाम जी वका लाइ सभु कुझु कुर्बान कयो। करबला मेरिन अल्लाह ज़वाल कुर्बानी क़यामत ताईं इंसानियत जी रहनुमाई कंदी रहंदी। अॼोको ॾींहुं सब्र हक ऐं सच जो साथ ॾियण जो पैगाम ॾे थो। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो योम आशूर ते पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो चवणु आहे त योम आशूर ईमान सब्र ईसार ऐं हक पसंदी जो दर्स ॾे थो। करबला जो वाकियो पैगाम ॾे थो त असूलनि जी पासदारी मज़हब ऐं बाबकार मुआशरे जो बुनियादु आहे। सेनेट चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी जो चवणु आहे त योम आशूर हक सदाकत सब्र क़ुर्बानी ऐं ज़ुल्म ख़िलाफ़ बीहण जे लाइ ज़वाल अलामत आहे। करबला जो वाकियो हक ऐं बातल जे विच में वाज़े फ़र्क़ खे उजागर करे थो। जंहिंजे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त करबला जी मिटीअ ते लिखियल क़ुर्बानी जो दास्तान क़यामत ताईं इंसानियत जी रहनुमाई कंदो रहंदो। हज़रत इमाम हुसैन ऐं करबला जे ॿियनि शहीदनि जी अज़ीम क़ुर्बानी उमत मुस्लिमा जो सरमायो आहे। बिनजुला ज़लज़ले में फौतियुनि जो अंगु 235 थी वियो। 1500 खां वधीक ज़ख़्मी। सिहत वारे वज़ारत तसदीक करे छॾी आहे त सुएं इमारतूं कट 10,000 खां वधीक माण्हू मलबे हेठां दॿल हणण जो ख़दशो। फिरियल इमारतुनि जी मलबो हटाइण लाइ ऑपरेशन जारी। बिनजुला जे वक़्ती सदर मुल्क में इमरजेंसी लागू करे छॾी। अमरीकी जूलॉजिकल सर्वे मूजिबि बिनजुला में ज़लज़ले सां फौतियुनि जो अंगु 1,00,000 ताईं वञी सघे थो। अमरीकी सदर पारां इदारनि खे बिनजुला जी तकड़ी मदद करण जी हिदायत। जेकॾहिं ईरान खे एटमी हथियार मिली विया त पहिरीं कलाक में इस्तेमाल कंदो। कंहिं बि सूरत में ईरान खे एटमी हथियार न ॾींदासीं। अमरीकी सदर ट्रंप जो मीडिया सां ॻाल्हियूं। सदर ट्रंप ज़रात बाबति एग्ज़ीक्यूटिव आर्डर ते सही करे छॾी। संदसि चवणु आहे त ज़रात जे शोबे में नई जदत आणींदासीं। जल्द ईरानी फंड्स मां कणक सोबाइन ऐं मकई ख़रीद कंदासीं। ईरानी पासदान इनकलाब ऐं अमरीकी सीनेट काम अख़्तियारियूं दोहा में मुलाक़ात कंदियूं। मुलाक़ातुनि दौरान ॿिन्ही मुल्कनि विच में ख़िलाफ़ ख़तम करण जी कोशिश कई वेंदी। ईरान ऐं विच ओभर जी रियासतुनि सां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं जेके अॻु में न आहिनि कयूं। अमरीकी नायब सदर डीडी वेंस जो बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट खे इंटरव्यू डीडी वेंस चयो त अमरीका ऐं ईरान सिधी राब्ते में जनरल क़ाइम करण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। सिधी राब्तनि दौरान मुख़्तलिफ़ माशी मरादनि ऐं सहकार ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। गडियल अरब इमारात ईरान सां अहिड़ा नवां राब्ता क़ाइमु कया आहिनि जेके अॻे न हुआ। उन्हनि राब्तनि में ईरानी पासवान इनकलाब सां राब्ता बि शामिल आहिनि। ईरान आबनाए हुर्मुज़ मां 4 आयल टैंकर वापसि मोकिले छॾिया। बरतानवी अख़बार मूजिबि जहाज़नि पासवान इनकलाब जे इलाइक़नि ते रस्तो तब्दील कयो। उन खां अॻु ओमान जहाज़नि ते आबज़ी बहरी रस्तो ॾिनो हो। ओमान जे ॾखण ओभर सार इलाइक़े में कार्गो जहाज़ जे हमले जा बि इतलाउ।

तस्वीर मां को रोपियो चयो आहे त खिते में इतिहादनि जी तरक़ी खुशहाली चाहियूं था। टीह जूं टिनि टेक्निकल टीमूं ॿीहर ईरान सां एटमी प्रोग्राम पाबंदनि बाबति ॻाल्हियूं कंदियूं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0383 5769 0300 3888 5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर। राबते जे लाइ 0320018 0003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेहराबपुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेहराबपुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहराबपुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

इस्लामा जी सर बुलंदी लायक कुर्बला जी मैदान में लाजवाब कुर्बान दी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जान सर की याद में सिंध सूबे समूरे मुल्क में मातमी जलूस बरामद कराची में मरकजी जलूस नश्तर पार्क का बरामद थो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त हैदराबाद सखर शेख बिंद्राबाद मीरपुर खास लाडखान डिवीजन के नंढन वन शहर में अदारी जारी सिक्योरिटी का इंतजाम सख्त मातमी जलूस के रूट्स से मोबाइल फोन सर्विस बंद मातमी जलूस के रस्तन से सबीलन न्याज लंगर जो बेहतमाम

हैदराबाद जामशोरो दादू मठियारी टंडो अलैयार टंडो ममन खान बदीन सजावल सठे जिले शहरों में अगदारी जारी मुख्तलिफ़ शहरों में अकतल मातमी जुलूस मंदिर तरफ रवान दवा सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई सख्त पुलिस सां गॾु रेंजर जवान बि मुक़रर थियल।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385 569 0300 3883 8559।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 2 0242460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
7: 0301-399-2836।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 91 896।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर के रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर,
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836।
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चूपर एटमाट अइंबा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे

0: होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आरई 03073592120
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94

सखर नानकाने डिवीजन में बाज़ारदारी जारी। सखर खैरपुर घोटकी जिले के नंढन वॾनि शहरनि में मातम जारी। रोड रस्तन ते सभिनी बि लॻल लाड़कानो कंबर शिदादकोट जगमबाद कश्मोर कनकोट शिकारपुर जिले के नंढन वॾनि शहरनि में बाज़ारदारी जारी। सिक्योरिटी सख़्त।

0: इमाम हुसैन ऐं जानसरनि जी अज़ीम क़ुर्बानी इस्लाम जो सरमायो आहे। सभिनी खे हमेशह हक़ ऐं सच सां गॾु बीहणु घुर्जे। कराची में मरकज़ी मातमी जुलूस में ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त मुहरम जे मौक़े ते को ख़ासि ख़तरो न आहे, पर पाकिस्तान जा दुश्मन ताड़ में रहंदा आहिनि। मुहरम जी सिक्योरिटी लाइ 60,000 अहलकार ऐं अमलदार मुक़ररु कया आहिनि। प्रिया कुमार जी बाज़ियाबी लाइ पुलिस कोशिशूं करे रही आहे, पर अञा बाज़ियाब नाहे थी। पाकिस्तान जीअं दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में बि कर्बला जे शहीदनि जी यादि में अदादारी। इराकी शहर कर्बला जे हज़ारे अदादारनि जी आमद। कर्बला जे शहीदनि जी यादि में अदादारी ईरान, शाम, यमन, लीबिया, बांग्लादेश ऐं भारत में बि अदादारी जो सिलसिलो जारी। कर्बला में इस्लाम लाइ लाजवाब क़ुर्बानी ॾींदड़ इमाम हुसैन अल इस्लाम ऐं संदसि साथियुनि खे भेटा पेश। आयम अलीर जे इलाइक़े खोखरा पार जे हिक घर मां माउ ऐं धीअ जा फाहू लॻल लाश थ। पुलिस मूजिबि औरत जी सुञाणप सबाज़ाल मोहम्मद हनीफ़ ऐं निंगरी सुञाणप नबीहा धीअ मोहम्मद हनीफ़ तौर थी आहे। लाश इस्पताल मुंतकिल करे छॾिया, वधीक जांच जारी।
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8-5-69

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000002734 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी ए मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

इमाम हुसैन ऐं जान निसारनि जी अज़ीम क़ुर्बानी इस्लाम जो सरमायो आहे। सभिनी खे हमेशा हक़ ऐं सच सां गॾु बीहणु घुर्जे। कराची में मरकज़ी मातमी जलूस में ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त मुहर्रम जे मौक़े ते को ख़ास ख़तरो न आहे, पर पाकिस्तान जा दुश्मन ताड़ में रहंदा आहिनि। मुहर्रम जी सिक्योरिटी लाइ 60,000 अहलकार ऐं अमलदार मुक़ररु कया आहिनि। प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ पुलिस कोशिशूं करे रही आहे, पर अञा ताईं बाज़ियाब न थी।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ
3: मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
3: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69।

0: एलोवेरा फैन
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर सूमर।

इमाम हुसैन अल इस्लाम ऐं जान निसारनि जी अज़ीम क़ुर्बानी इस्लाम जो सरमायो आहे। सभिनी खे हमेशा हक़ ऐं सच सां गॾु बीहण घुर्जे। कराचीअ में मर्कज़ी मातमी जुलूस में ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त मुहरम जे मौक़े ते को ख़ासि ख़तरो नाहे, पर पाकिस्तान जा दुश्मन ताड़ में रहंदा आहिनि। मुहरम जी सिक्योरिटी लाइ 60,000 अहलकार ऐं अमलदार मुक़ररु कया आहिनि। प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ पुलिस कोशिशूं करे पई, पर अञा ताईं बाज़ियाबी नाहे थी। डिजी रेंजर्स सिंध जो कराचीअ में मर्कज़ी मातमी जुलूस जो दौरो, सिक्योरिटी इंतज़ामनि जो जाइज़ो वरितो वियो। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज रेंजर्स कंट्रोल रूम जो दौरो करे सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो। अमलदारनि डीजी रेंजर्स खे मर्कज़ी जुलूस जी सिक्योरिटी बाबति आगाही ॾिनी। ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो समूरे सिंध में अटकियल 7,000 रेंजर्स अहलकार ऐं आफ़ीसर मुक़ररु आहिनि। डीजी रेंजर्स पारां सूबे में सिक्योरिटी जा इंतज़ाम बहितर करण जी हिदायत। पाकिस्तान जीअं दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में आज़ादारी। इराकी शहर करबला में हज़ारें आज़ादारनि जी आमद। करबला जे शहीदनि जी यादि में आज़ादारी ईरान, शाम, यमन, लीबिया, बंगलादेश ऐं भारत में बि आज़ादारी जो सिलसिलो जारी। करबला में इस्लाम लाइ लाज़वाल क़ुर्बानी ॾींदड़ इमाम हुसैन अल इस्लाम सां साथियुनि खे भेटा पेश।

ईरान जंग में पाकिस्तान जो किरदार क़यामत ताईं यादि रखियो वेंदो। पाकिस्तान ईरान ऐं अमरीका में ठाक कराए मुस्लिम मुल्कनि लाइ आॾो सुरखरू थियो। दिफ़ा वारो वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त पाकिस्तान जो किरदार यादि रखियो वेंदो। मुस्लिम मुल्कनि जो बि हिकु नओं इतिहाद नज़र अची रहियो आहे। ईरान फलस्तीन ऐं लबनान जी अवाम जी क़ुर्बानीनि रंग लाथो आहे। फलस्तीन जी आज़ादी वारो वक़्तु बि परे न आहे। लबनानी अवाम बि इसराइली ज़ुल्म खां निजात हासिल कंदो। ईरानी फ़ौज आबन हुरमज मां गुज़रण जी कोशिश कंदड़ चार आयल टैंकर्स खे मोटाए छॾियो। आबन हुरमज में ओमान जे सामूरी इलाइक़े में कार्गो जहाज ते बि हमिलो। ईरानी पासदान इनकलाब चयो आहे त बहरी जहाज रुगो ईरान जे मंज़ूर थियल गुज़रगाहनि मां ई गुज़री सघनि था। अमरीका ईरान जी सिधी रीत फ़ौजी राबता क़ाइम करण जो फ़ैसिलो। ॿिन्ही मुल्कनि जे फ़ौजदारी अमलदारनि जी मुलाक़ात ईंदड़ हफ़्ते कतरी शहर दोहा में थींदी। अमरीकी नायब सदर जी बिन चयो आहे त ईरानी फ़ौज सां गॾु सिधी रीत राबता जनरल क़ाइम करण ते इतफ़ाक़ थियो आहे। ईरानी ऐं अमरीकी फ़ौजी अख़्तियारियूं दोहा में मुलाक़ात कंदियूं।

0: सदर आसिफ अली ज़रदारी ने माली साल जी वफाकी बजट जी मंजूरी ॾेई छॾी। पार्लियामेंट में मंजूर थियल फाइनेंस 2026-27 जी सदन मंजूरी ॾिनी। बलीर जे इलाके खोखरापार जे हिक घर मां माउ ऐं धीअ जा फाउ लॻल लाश। पुलिस मूजिब औरत जी सुञाणप सबाज़ाल मोहम्मद हनीफ़ ऐं इंग्रेज़ी सुञाणप नबियादी मोहम्मद हनीफ़ तौरु थी आहे। लाश इस्पताल मुंतकिल कया विया। वधीक जांच जारी आहे। पनवा किले जो औरत मुबैना तौर ते कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल। लाश दरिया में रोड़ियो पियो। कचे वारे इलाइक़े में नवीदा धीउ फिरोज़ महर खे मुबैना तौर ते कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो वियो। पुलिस चवण आहे त वाक़े जी जांच शुरू कई वई आहे। जांच बाद ई हक़ीक़तूं साम्हूं ईंदियूं। मेहड़ मां अगवा थियल निंगरी उजाला परवीन सोलंगी बाज़ियाब न थी। सेदर मैसर पाड़े मां अगवा थियल निंगरी 73 ॾींहनि खां गुम। वारस परेशाननि जो शिकार। मुखी निंगरीअ जी बाज़ियाबीअ लाइ वल शमसदीन सोलंगी चवण आहे त पुलिस उजाला परवीन जी बाज़ियाबी लाइ का बि दिलचस्पी नथी वठे। धीउ खे बाज़ियाब कराए वञे। आमिन ज़िला में ज़लज़ले सबबि तबाह थियल वधीक ख़ौफ़नाक तबाही थी वई। मलबे जे ढेर बणियल इमारतुनि मां माण्हुनि खे कढण वारो ऑपरेशन जारी। विंदुला जी हुकूमत ज़लज़ले सबबि फौतनि जो अंग वधी 235 थियण जी तस्दीक करे छॾी। हज़ारे ज़ख़्मी इमदादी कारकुननि पारां अमल माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण जूं कोशिशूं जारी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8-5-69।

0: मुख़्तलिफ़ ऐं कालम में मौजूदु आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई न थो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
2: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301 2196 851।

0: एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज का इशा के नमाज तई हर आचर से सुबह जो 9 वगे का रात 8 वगे तई मरीजन जो इलाज कंदा एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर राबते 0300-385-569
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शरण तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
3: मजे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

जानसरन की याद में सिंध समेत समूरे मुल्क में आज़ादारी जारी। कराची में मरकजी जलूस नशर पाक का बरामद रवायती रस्म का हुसैनिया ईरानिया खारदार पहुंची नहर पिशावर कोयटा गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर में निकल मातमी जलूस मंजिल तरफ रवाना दवा सिंध समेत बलूचिस्तान केपी पंजाब समेत समूरे मुल्क में सिक्योरिटी सख्त मोबाइल सर्विस भी बंद। हैदराबाद में कदमगाह तां बरामद थियल मातमी जुलूस जो रवायती रस्ते सफर जारी करबला दादन शाह जे पिड़ते पहुंची नहर थी जाम थोड़ो शहर में सिरे के नंढन शहरन में आज़ादारी जारी। दादू शहर समेत जिले के समूरन तालकन में मातम मटियारी शहर समेत जिले के नंढन शहर में मातम टंडो आलायार समेत जिले के नंढन शहर में गोठन में आज़ादारी। शहीद वीरेंद्राबाद ए बीरपुर खालसी विजन में शहीदों के भेटा पेश करने जो सिलसिलो जारी। नवाबशाह शहर समेत जिले के नंढन शहर में निकल मातमी जलूस मंजिल तरफ रवाना हुआ। नुसरत फिरोज शहर समेत जिले के नंढन शहर में आज़ादारी जारी। सांगड़ शहर समेत जिले के नंढन शहर में गमे हुसैन

0: ਕਰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿੱਠੀਏ ਬਿਨ ਇਲਾਕਨ ਮੇ ਕਰਰਾ ਸ਼ੈਦਨ ਕੇ ਭੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਮ ਜਾਰੀ ਰੋਡਨ ਰਸਤਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬਸ ਸਖਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 333 8569

0: ताईं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

अलजल्लबै, जिसको मौला की ज्यारत करनी है बोलो के मौला अलजल्लबै, जो पीछे है वो भी अलजल्लबै के मौला, अलजल्लबै के मौला, अलजल्लबै के मौला, अलजल्लबै के मौला, अलजल्लबै के मौला, अलजल्लबै के मौला, अलजल्लबै के मौला, एक एक मिसरा आज की शब के लिए अलजल्लबैक, सब बोलो अलजल्लबैक मौला, अलजल्लबैक मौला, अलजल्लबैक मौला, देखना एक रोज मंजर।

0: आत्मियों के लिए।
1: ना आएंगे जम्मा आएंगे जम्माला आएंगे देखना हर रोज मौला मजलिसे करवाएंगे देखना हर रोज मौला मजलिसे करवाएंगे देखना हर रोज मौला मजलिसे करवाएंगे मजलिसों में करबलावा ले बुलाए जाएंगे मजलिसों में करबलावा ले बुलाए जाएंगे मजलिसों में करबला
0: एक शेर कहने वाला दूसरा खुदा की कसम बोला मुझे हिम्मत दे
1: ने करबलावा ले बुलाए जाएंगे कैसे देखेंगे वो मंजर पंजतन जब आएंगे कैसे देखेंगे वो मंजर
0: शहीदों के लिए शहीदों के लिए
1: कैसे देखेंगे वो मंजर
0: शहीदों के लिए
1: आएंगे देखना उन मजलिसों में हर शहीद आ जाएगा मजलिसों में हर शहीद आ जाएगा देखना उन मजलिसों में हर शहीद आ जाएगा फिर तो वो मातम करेंगे आत्मा हिल जाएगा।

0: भगवान माला आएंगे, बोलो बोलो माला सुनते हमारा ईमान है, माला सुनते आएंगे जब माला आएंगे, जब माला आएंगे। आंधियां जो चल रही हैं, आंधियां जो चल रही हैं कुफ्र और इल्हाद की, आंधियां जो चल रही हैं कुफ्र और इल्हाद की, है आजादारी की दुश्मन नस्ल जो शद्दाद की, है आजादारी की दुश्मन नस्ल जो शद्दाद की, कब तलक बच कर रहेगी कौम इब्ने ज़ियाद की, कब तलक बच कर रहेगी कौम इब्ने ज़ियाद की, है बहुत नजदीक मंजर मौसम इंसाफ का, मौसम इंसाफ का, हम भी बदला लेंगे अपने बेखता सलाफ का। जब मौला आएंगे, जब मौला आएंगे, जब मौला आएंगे,
1: फिर पढ़ता हूँ ये जो पहले की
0: आएंगे, जब मौला आएंगे,
1: अरीजे
0: अरीजे आएंगे, जब मौला आएंगे, जब मौला आएंगे, ये अरीजों का चरागा है जो सतह आब पर, ये अरीजों का चरागा है।

0: वो मंजर पंजतन जब आएंगे कैसे देखेंगे वो मंजर आएंगे देखना उन मजलिसों में देखना उन मजलिसों में हर शहीद आ जाएगा
1: हर शहीद आ जाएगा
0: देखना उन मजलिसों में हर शहीद आ जाएगा फिर तो वो मातम करेंगे आसमां हिल जाए

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लाए 0301-2196-8051।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3885-69।

0: तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।
1: गुलहाए अकीदत व एहतराम बहुजूर खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। सफर तवील है, राह निजात छोटी है, बहुत है जिक्र अली और हयात छोटी है। अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली है नाम बड़ा और कायनात छोटी है।

सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ महीने ईरान वञण जा इम्कान शहीद आयदाद में शिरकत कंदो। ज़रिए जो चवण आहे त वज़ीर आज़म जे ईरानी दौरे खे हतमी शकल ॾिनी पई वञे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां गॾु आला सतह शहीद कई वेंदी। जंग में दुनिया यादि रखियो पवंदो। मुस्लिम मुल्कनि जो बि हिकु नओं इतिहाद नज़र रहियो आहे। ईरान फलस्तीन लबनान जी अवाम जेको रंग लाथो आहे। फलस्तीन जी आज़ादी वारे वक़्त बि परे न आहे। लबनानी अवाम बि इसराइली ज़ुल्म खां निजात हासिल कंदो।

नवाबशाह शहर समेत जिले के नंढन वन शहरों में निकल मातमी जुलूस मंजिल तरफ रवा दवा दशहरो फिरोज शहर समेत जिले के नंढन

वॾनि शहरनि में ज़ादारी जारी। सांगड़ शहर समेत ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में ग़म हुसैन जा मंज़र या हुसैन जूं सदाऊं। मीरपुर ख़ासि शहर ऐं नंढनि वॾनि इलाइक़नि में निकतल मातमी जुलूस मंज़िल तरफ़ रवां दवा। उमरकोट शहर समेत ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में आज़ादारी जारी। थरपारकर जे शहर मिठी ऐं ॿियनि इलाइक़नि में करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ मातम जारी। रोडनि ऐं रस्तनि ते सबीलू लॻल, सिक्योरिटी जा बि सख़्त इंतज़ाम। सखर ऐं लाड़कणे डिवीजन में बि ज़ादारी जारी। रोहड़ी में नव ढालनि वारो तारीख़ी मातमी जुलूस हैदर शाह हकानी ते राति दसण बाद ॿीहर बरामद। जुलूस रिवायती रस्तनि तां थींदो, शाम जो शोहदाए कब्रस्तान वटि नहर थींदो। सखर शहर समेत ज़िले जे ॿियनि इलाइक़नि में बि आज़ादारी जारी। खैरपुर शहर समेत ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद। कोटकी शहर ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में मातम जारी। रोडनि रस्तनि ते सबीलूं लॻल। लाड़काणो शहर समेत ज़िले जे समूरनि शहरनि ऐं ॻोठनि में आज़ादारी जारी। कंबर शहदादकोट शहरनि समेत नंढनि वॾनि शहरनि में मातम जारी। जेकाबाद शहर समेत ज़िले जे समूरनि शहरनि में मातमी जुलूस मंज़िल तरफ़ रवां दवा। कश्मोर ऐं कंदकोट शहर समेत ज़िले जे समूरनि शहरनि ऐं ॻोठनि में आज़ादारी। शिकारपुर शहर समेत ज़िले जे बि नंढनि वॾनि शहरनि में मातम सिक्योरिटी सां। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं जान इसारान जी अज़ीम क़ुर्बानी इस्लाम जो सरमायो आहे। सभिनी खे हमेशह हक़ ऐं सच सां गॾु बीहणु घुर्जे। कराची में मरकज़ी मातमी जुलूस में ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त मुहरम जे मौक़े ते को ख़ासि ख़तरो न आहे, पर पाकिस्तान जा दुश्मन ताड़ में रहंदा आहिनि। मुहरम जी सिक्योरिटी लाइ 60,000 अहलकार ऐं अमलदार मुक़ररु कया आहिनि। प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ बि पुलिस कोशिशूं करे रही आहे, पर अञा बाज़ियाब नाहे थी। डीजी रेंजर्स सिंध जो कराची में मरकज़ी मातमी जुलूस जो दौरो। सिक्योरिटी इंतज़ामनि जो जाइज़ो वरितो। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ रेंजर्स कंट्रोल रूम जो बि दौरो करे सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो। अमलदारनि डीजी रेंजर्स खे मरकज़ी जुलूस जी सिक्योरिटी बाबति आगाही ॾिनी। ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त समूरी सिंध में अटकल 7,000 रेंजर्स अहलकार ऐं आफिसर मुक़ररु आहिनि। डीजी रेंजर्स पारां सूबे में सिक्योरिटी जा इंतज़ाम बहितर करण जी हिदायत। सिंध में मुहर्रम अल हराम दौरान सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम कया विया आहिनि। हुकूमत जी पहिरीं तर्ज़ी आहे त कंहिं बि क़िस्म जो अणवणंदड़ वाकियो न थिए। हैदराबाद ऐं नवाबशाह में मातमी जुलूस जो दौरो करण बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबाई घर वज़ीर ज़ियाल हसन लंजार चयो आहे त सिंध पुलिस जूं पघारूं पंजाब पुलिस खां वधीक आहिनि। सिंध जे समूरनि डिवीजनल हेडक्वार्टर्स खे सेफ सिटी बणायो वेंदो। सूबाई काबीना में तब्दीलीअ वारियूं ख़बरूं अफ़वाह आहिनि। पार्टी क़यादत चाहे त तब्दीली बि करे सघे थी। एमक्यूएम जे एमपीए पारां इवान में ॾिनल धमकीअ जी जांच जारी आहे। जांच रिपोर्ट स्पीकर वटि पेश करण बाद कार्रवाई थींदी। पाकिस्तान जी या दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में आज़ादारी। इराकी शहर करबला में हज़ारे आज़ादारनि जी आमद। करबला जे शहीदनि जी यादि में आज़ादारी। ईरान, शाम, यमन, लीबिया, बंगलादेश ऐं भारत में बि आज़ादारी जो सिलसिलो जारी। करबला में इस्लाम लाइ लाज़वाल क़ुर्बानी ॾींदड़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदसि साथियुनि खे भेटा पेश।

जबा शरीफ सां गॾु आला सते वफ़द बि हूंदो। शहीद आयतुल्लाह खामनाई जी तदफीन ईंदड़ महीने कई वेंदी। ईरान जंग में पाकिस्तान जो किरदार क़यामत ताईं यादि रखियो वेंदो। पाकिस्तान ईरान ऐं अमरीका में ठाह कराए मुस्लिम मुल्कनि ॾाढो सुथरो थियो आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान जो किरदार यादि रखियो वेंदो। मुस्लिम मुल्कनि जो बि हिकु नओं इतिहाद नज़र अची रहियो आहे। ईरान, फलस्तीन ऐं लबनान जी अवाम जी क़ुर्बानीनि रंग लाथो आहे। फलस्तीन जी आज़ादी वारो वक़्त बि परे न आहे। लबनानी अवाम बि इसराइली ज़ुल्म खां निजात हासिल कंदो। ईरानी फ़ौज आबनाह हुर्मुस मां गुज़रण जी कोशिश कंदड़ चार ऑयल टैंकर्स खे मोटाए छॾियो। आबनाह हुर्मुस में अमान जे समुंडी इलाइक़े में ईरानी पासान इनकलाब चयो आहे त बहरी जहाज उहो ईरान जी मंज़ूर थियल गुज़रगाह मां ई गुज़री सघनि था। सदर आसिफ अली सरदारी नए माली साल जी वफाकी बजट की मंजूरी ॾेई छॾी। पार्लियामेंट मां मंजूर थियल फाइनांस 2026-27 जी सदर मंजूरी ॾिनी।

0: थिया प्रिया माना ख़बर त सॼी अथनि प्रिया किथे आहे माना रिकवर नथी मिले असांखे पंहिंजी न्याणी मिले असांखे कहिड़ी ख़बर कंहिं वटि आहे किथे आहे अञा ताईं असां आसिरे में वेठा हूंदा असांजी न्याणी ईंदी ऐं कॾहिं ईंदी रियासत जी ज़िमेवारी आहे असांखे न्याणी रिकवर कराए ॾियनि
1: अॼु खां 5 साल अॻु असांजी प्रिया संगरार जे मौला अली जे पेड़ में सबील हलाईंदे उतां मिस थी वई आहे अॼु बि उहे ॾींहं आहिनि उहे अखियुनि में गोरा आहिनि उहे माउ पीउ प्रिया जा राजकुमार ऐं हुनजी सॼी घरवारी अॼु बि उहे वाटू निहारे थी मौला अली खे ॿाधाए थी त हे मौला अली जंहिं पेड़ मां मुंहिंजी न्याणी वई आहे उहा असांजी न्याणी इन्हीअ पेड़ ताईं मिलंदी अॼु बि हुननि जो इहो ई यकीन आहे
2: सखर जे इलाइक़े संगरार मां 5 साल अॻु योम आशूर ते सपील विरहाइण दौरान अगवा थियल मासूम प्रिया कुमारी जो को ॾस पतो न पियो सिंध हुकूमत ऐं सिंध पुलिस पहिरें ॾींहं खां अॼु ताईं वारिसनि खे रुॻो ठल आसरा ॾींदी रहे ऐं सखड़ियूं दवाऊं कंदे नज़र आई 5 सालनि दौरान सिंध में 2 हुकूमतूं आयूं 4 आईजी तब्दील थिया केतिरा ई भेरा पुलिस प्रिया जे वेझो हुअण जी दावा कई पर हिकु बि ॻाल्हि सच साबित न थी प्रिया कुमारी जी बासियाबी लाइ शहदादकोट बीरपुर पटोरो ऐं ॿियनि शहरनि में एहतजाज मलीर जे इलाइक़े खोखरा पार जे हिक घर मां माउ ऐं धीउ जो हाउ लॻल लाश रथ पुलिस मौजिब ओर जी सुञाणप सबा ज़ाल मोहम्मद हनीफ़ ऐं नींगरी जी सुञाणप नबीह धीउ मोहम्मद हनीफ़ तौर थी आहे लाश अस्पताल मुंतकिल करे छॾिया आहिनि पुराणी तक जवाबदार वोसो में जसन राह हलंदड़ हो जंहिं तां वाकियो पेश आयो आहे पुलिस वाकिए वारे हंधु पहुची जांच शुरू करे छॾी शकी जवाबदारनि जूं कुझु औरतूं गिरफ़्तार पने आखिर वेझो औरत मुबैना तौर कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल लाश दरिया में लोड़ियो वियो कच्चे वारे इलाइक़े में नवीदा धीउ फेरोज महर खे मुबैना तौर कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो वियो पुलिस जो चवण आहे त वाकिए जी जांच शुरू करे छॾी आहे जांच पारी हक़ीक़तूं साम्हूं ईंदियूं टंडो मोहम्मद ख़ान भट सां घर जी भित किरण सबब नींगर दबी पहुतो घोट जम्मू बाग में भित किरण सबब 6 सालनि जो मासूम नींगर रिज़वान लखारी दबजी फोत थी वियो ऐं वेनेज़ुएला में ज़लज़ले सबब थियल तबाही वधीक ख़ौफ़नाक थी वई मलबे जो ढेर बणियल इमारतनि मां माण्हुनि खे कढण वारो ऑपरेशन जारी वेनेज़ुएला जी हुकूमत ज़लज़ले सबब पहुतियुनि जंग वधी 579 थी वियो 2980 ज़ख़्मी किरियल इमारतनि जे मलबे हेठां दॿियल हज़ारे माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण लाइ इमदादी कार्रवाइयुनि जो सिलसिलो जारी
3: आप सुन रहे थे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है निकल निकल के रोता है दिन छुप छुप के रात रोती है
4: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।

0: कलाम लिखा गया और पुरसोज लहनों ने उसे पढ़कर अपने तरन्नुम को जाविदानी अता की। आइए उन्हीं में से एक कलाम समाअत करते हैं जिसे रेडियो पाकिस्तान लाहौर से पेश कर रही हैं शमसा कमल। ये कलाम जनाब नासिर काजमी साहिब ने तहरीर किया था और फिर 1980 में इसे रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर रिकॉर्ड किया गया।
1: सलाम।

दग जो ओठी तरस सजाए भगुनी गरजो ओठी तरस सजाए भगुनी गरजो पांच नढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए चयो ओठी पुत्र अहवाल तडस बाबा बाबा करे करी कान थी बस चयो ओठी।

हर हर जो ओठी तरस सजाए भगोनी गर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए चयो साइन सुगरा नाम अथम अब बाबू हुसैन इमाम अथम चयो साइन सुगरा।

ओठी तरस सजाए भगोनी गरजो ओठी तरस सजाए भगोनी गरजो पांजे नढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए।

तरस सजाए वगोनी घर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए ओठी तरस सजाए वगोनी घर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी

शहीद बेनज़ीर आबाद ऐं मीरपुर खास डिवीजन में बि कर्बला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ मातबी जुलूस ऐं असादारी नवाबशाह शहर समेत ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में मातबी जुलूस बरामद थिया। नौशेरो फिरोज़ ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में गमे हुसैन अल सलाम में असादारी सांगढ़ ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में बि हर पासे या हुसैन जूं सदाऊं।

मीरपुर खास जिले में भी करबला के शहीदन के भेटा पेश कर लाए मातमी जुलूस बरामद उमरकोट शहर समेत जिले के नंढन वडन शहर नजर आ रही सर पारकर के शहर मिठी ए बेन इलाक में करबला के शहीदन के भेटा पेश कर लाए मातम रोडन ए रस्तन से सर्पीलू लगाई हुई सिक्योरिटी का भी सख्त इंतजाम।

सखर ऐं नारकंडा डिवीजन में बि योम आशूर जा मातमी जुलूस कढिया विया। रोड़ी में नव ढालनि वारो तारीख़ी मातमी जुलूस पंहिंजे आख़िरी मंज़िल शहदाए कब्रिस्तान वटि नहर थी वियो। सखर शहर समेत ज़िले जे ॿियनि इलाइक़नि में बि आज़ादारी खैरपुर ऐं घोटकी ज़िले में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में मातमी जुलूस बरामद थिया। लाड़काणो ऐं कंबर शहदादकोट ज़िलनि जे नंढनि वॾनि शहरनि में मातम जेकबाद कश्मोर कदकोट ऐं शिकारपुर ज़िलनि में बि योम आशूर अक़ीदत ऐं एतराम सां मल्हायो वियो। सिक्योरिटी सां

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ए सदस जान सरन के सलाम सिद समेत समूरे मुल्क में योम आशूर ते मातम जुलूस बरामद कराची में मरकजी जुलूस रिवायती रस्तन का थींदो इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर वट नहर थी वियो शाम गरीबा बरपा इस्लामाबाद लाहौर पिशावर क्वेटा गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर में भी मातमी जुलूस कटिया वह योम आशूर ते चैन सूबन समेत समूरे मुल्क में सिक्योरिटी जा सख्त इंतजाम किया गया। हैदराबाद में कदम का मौला अली ता बरामद थियल फातिमी जुलूस रिवायती रस्तन का थींदो पेंजी आखिरी मंजिल करबला दादन शाह जे पिड़ ते नहर थी वियो जाम शोरो जिले जे नंढन वॾनि शहरनि में आज़ादारी दादू शहर समेत जिले जे समूरनि शहरनि में मातम मटियारी टंडोलयार ऐं टंडो मोहम्मद खान जिलनि में बि योम आशूर ते हर तरफ़ या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद बदीन टटो ऐं सजावल जिलनि जे नंढनि वॾनि शहरनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में मातमी जुलूस बरामद थिया सबीलनि ऐं न्यास नगर जो बि बंदोबस्तु कयो वियो।

ईरान की बहरी नाकाबंदी दौरान अमरीकी फौज पारा तहवील में वरतल बवी ईरानी मुहाना पाकिस्तान पहुंची व्या। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार तस्दीक कंदे बवी ईरानी मुहाना कराची पहुंता है। संदन डे वापसी लाए ईरानी अख्तियारन से राबते में आयो। मुहानन की बाहिफाजत वापसी लाए अमरीका ईरान से लागीतो राबते में हुआसी। ये अमरीकी तहवील में वापस करायल ईरानी मुहानन जो चौथों ग्रुप है।

अमरीका ईरान जंग का पोए यूएई ए ईरान जो पहरियों भेरों आला सतह से बाजाबतो रबतो बिन्हीं मुल्कन विच में बेड़ी सर्विस भी बहाल थी वही ईरानी कडई वसेल पास रखी यूएई के हम मनसब विच में रबते दौरान खत्े में थीदड़ तब्दीलियों से तफसीली गाल बोल कई शेख अब्दुल्ला बिन जायद ईरान अमरीका माहिरे से मुकम्मल अमल दरामद से जोर भरे हो।

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो ईंदड़ महीने ईरान वञण जो इम्कान शहीद आयतुल्लाह खामनई के जनाज़े नमाज में शिरकत कंदो ज़रियन जो चवण है वज़ीर-ए-आज़म के ईरानी दौरे के हतमी शक्ल डिनी पी वे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सा गड आला सतही वफद भी होंद शहीद आयतुल्लाह खामनई की तदफीन ईंदड़ महीने कई वी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: दिली अकीदत तो एहतराम के साथ हदिया अशार बहुजूर इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो। आता है मुहर्रम का जो हर साल महीना, सिखलाता है इखलास व मोहब्बत का करीना। जुल्मत गहे बातिल में भी मिल जाती है मंजिल, शब्बीर की गर फिक्र से हो पुर नूर जो सीना।

अमेरिका ईरान जंग का पोए यूएई ए ईरान जो पहरियो भेरो आला सतह ते व्हाट्सएप ता रबतो बिनी मुल्कन विच में बेड़ी सर्विस भी बहाल थी वही ईरानी पडई वजीर अब्बास इराक्सी ए यूएई जे हम मनसब विच में रबते दौरान खत्ते में थींदड़ तब्दीलियन ते तफसीली गाल बोल कई शेख अब्दुल्ला बिन जायद ईरान अमेरिका माहिरे ते मुकम्मल अमल दरामद ते जोर भरियो। इस्लाम की सरबुलंदी लाए करबला के मैदान में लाजवाल कुर्बानी दींदर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ए संदस जान सारन के सलाम। सिंध समेत समूरे मुल्क में योम आशूर ते मातमी जुलूस बरामद। कराची में मरकजी जुलूस रिवायती रस्तन ता थींदो। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा वट नहर थी वियो। शाम में खरीफा बरपा। इस्लामाबाद लाहौर पिशावर क्वेटा गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर में भी मातमी जुलूस कटिया वा। योम आशूर ते चैन सूबन समेत समूरे मुल्क में सिक्योरिटी जा सख्त इंतजाम किया गया। हैदराबाद में कदमगा मौला अली ता बरामद थियल मातमी जुलूस रिवायती रस्तन का थींदो। पेंजी आखिरी मंजिल करबला दादर शाह जे पिड़ ते नहर थी वियो। जामशोरो जिले जे नंढन वॾनि शहरनि वज़ादारी दादू शहर समेत जिले जे समूरनि शहरनि में मातम मटियारी टंडो लयार ऐं टंडो मोहम्मद खान जिलनि में बि योम आशूर ते हर तरफ़ याव हुसैन जूं सदाऊं बुलंदु। वदीम चट्टो ऐं सजावल जिलनि जे नंढनि वॾनि शहरनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में मातमी जुलूस बरामद थिया। सबीलनि ऐं न्यास नगर जो बंदोबस्त बि कयो वियो। शहीद में नजराबाद ऐं मीरपुर खास डिवीजन में बि करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ मातमी जुलूस ऐं आज़ादारी। नवाबशाह शहर समेत ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में मातमी जुलूस बरामद थिया। नौशेरो फिरोज़ ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में हमे हुसैन अलैहिस्सलाम में आज़ादारी। सागर ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में बि हर पासे या हुसैन जूं सदाऊं। मीरपुर खास ज़िले में बि करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ मातमी जुलूस बरामद। उमरकोट शहर समेत ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में आज़ादारी। थरपारकर जे शहर मिठी ऐं ॿियनि इलाइक़नि में करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ मातम रोडनि ऐं रस्तनि ते सबीलूं लॻायूं वयूं। सिक्योरिटी जा बि सख़्त इंतज़ाम।

0: सखर ऐं लाड़कणे डिवीजन में बि योम आशूर जा मातमी जुलूस कढिया विया। रोहड़ी में नव ढालनि वारो तारीख़ी मातमी जुलूस पंहिंजी आख़िरी मंज़िल शहदा कब सां वटि नहर थी वियो। सखर शहर समेत ज़िले जे ॿियनि इलाइक़नि में बि अज़ादारी। खैरपुर ऐं घोटकी ज़िलनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में मातमी जुलूस बरामद थिया। लाटकाणो ऐं कंबर शहदादपुर ज़िलनि जे नंढनि वॾनि शहरनि में मातम, जेका बाद कश्मोर कनकोट
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जीए एफएम 94।